जब हमें अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, जब पूरा सतगुरु मिल जाता है, पूरा सतगुरु मिल जाए जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितृ शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।

कसमल जाए हर गां नान कसमल जा रवन रवन रवन बरे गदरे नीला रे जगरे रे गदरे नमदा मरे बमदा रे मदा जाने रे दबा दबा दबा मबरे गदरे दरगदा नीरे दरगदा नीरे दरगदा

आस को आस जगत गुरु की पार्श पेट पर्श करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुर सिर हाथ तरियो कसमल जाय हर हनन कसमल जाय।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास ना ये रामदास सरी ना ये रामदास सरी दस सरी ना ये रामदास सरी ना ये रामदास सरी हम अब

कौन कौन दुखी है। पहला दुखी जहान ते ओ समझो, पहला दुखी जहान ते ओ समझो, जेदी नारी ना आगे आकार होवे। दूजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेदे घर पुराना बीमार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। ते सब तो दुखी जहान ते ओ समझो, जेदा बाणी दे नाल ना प्यार होवे। ए भी तां इक दुख है।

ने पर अकाल पुरख के नाल कैसी प्रीत कर दी। धन गुरु नानक साहब जी अपने शब्द विच अपने मन की अवस्था इउं बयान कर दे। सुनदा प्रभु जीओ ना पति नूं कहिंदे अकाल पुरख तू मेरा

औरतों के जिस तरह औरत अपने पति को बगैर नहीं रह सकती, ऐ अकाल पुरुष तू मेरा पति, इसी तरह मम्मी थी।

गुरुवर दिन साल हो कैसी प्रीत कर दीनी अकाल पुरख देना गुरु अर्जुन साहब जी अपने मन की तरफ क्यों प्यार कर दे।

मेरे शरीर का एक एक अंग कट दे, मैं से नहीं करना। पेंड कहते शरीर, ये शरीर भावें खत्म।

गुरुआ देवी कृपा का विपरीत रहा बना असली लोग कि प्रेरित करते हैं साढ़े बारे भी भगत ने गुरुआ ने अपनी बाणी बयान किया पवित्र उदास असी लोग कैसी प्रीत करने और कि करने हैं।

पर्दे लाते पाप करते कहते मैनू कोई नहीं देखता पर ये भुल जाते वो परमेश्वर का अंतर्यामी वो सब कुछ देखते हैं कि तू की करना है।

जरा इंसान सारी ऊपर मायावल ध्यान रखा जाए अंत वेले मंजीते पे कहते मना दुनिया तू एवे तो चल मन मुताबक माया भी ना कमा सके ध्यान मायावल मौत हो गई ते अगला जन्म ओनु सप का मिलता है आप नु पता है सप जिहड़ा माया ते रहिंदा इस तरह ओ इंसान वासना दा बदला होया अगला जन्म

0: अब की बार बख्श बंदे को बहुत ना पाए, बहुत दुख उठा ले हैं, जमन मरन बहुत तकलीफा चल रही हैं। इस आत्मा नू अपने घर विच बुला लो, इस भटकदी भरम की आत्मा नू अपने दर ते प्रवान कर लो, मुड़ के जन्म ना हो गए, बोलो सतनाम। जमन मरन तो मुक्त कर दियो, ये सारे पवाड़े जमन मरन करके ही सबनों वड्डा दुख जमन ते मरन दा ही है। बिच बचाले हो दुख तकलीफा कितनिया पाउंदा है, बार बार जमी जांदा, बार बार मरी जांदा है, कितनिया तकलीफा पाउंदा है। ते सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे ते, मेरा जमन मरन कट दे। हुण जहांगीर आम बंदा क्या जमना मरना कट देवेगा, वो तो खुद जमन मरन दे गेट च पिया होया है, बोलो सतनाम।
1: श्री वाहिगुरु।
0: वो कहंदा पैसा लै लो, माया लै लै, पिंड लै लै। सिख कहंदा महाराज ने झूठिया चीजा दे विच मेरा तो जन्म ये मौलिक जन्म निकल जाएगा, मैनू महाराज परमावो ना, मैनू ये झूठिया चीजा दे विच ना रखो, मैनू सच्ची दात बख्शिश करो, बोलो हुण। ये गुरु तो बिना कौन करेगा, जमना मरना कौन कट देगा, मुक्त कौन कर सकता है, जमा तो कौन बचा सकता है, बोलो
1: सतनाम।
0: मुक्ति दा दाता कौन है, हुण जहांगीर मुक्ति दे सकता है, किते नाम दी दात वो दे सकता है, नहीं। महाराज कहंदे हन जिस वस्तु को लैन तू आया राम नाम।

हल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करदे हन। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहिब ते ऊने साहिब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई, ते ज्यों इस मच्छी नूं चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नूं, ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी, क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी, उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नूं दस्या, शिकारी नूं दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, ओ भी ओथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ए शे दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ए चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ए दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया, ता अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नूं जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

बाहर की अगन जा बुझे जल सरता कै, नाव में जो आग लगे कैसे कै बुझाई। बाहर की अगन ज्यों बुझे जल

छाट तो उत्पन्न होना संपूर्ण जाति का राग है। वादी समाधि कुछ लोग मां के सामान दे कई धात गंधार नुवादी समाधि मानते हैं, लेकिन ये गाण कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चाल यदि कोई होगी वादी समाधि, हमें मां सावे हमें धात गाँव।

जिन कल राखी मेरी जिम बुलावे तुम बोले स्वामी, जिम बुलावे तुम बोले स्वामी कुदरत कौन हमारी। साधु संग नानक जस गायो।

0: जे को वचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी करिए। जो आपां इस संगत विच विचार रहे हैं गुरुआं दे वचन ने, संतां दे वचन ने, साधुआं दे वचन ने, जितनी भी गुरबाणी है बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु,
0: सब संतन के वचन इकट्ठे कीते हुए हैं। सो जो आपां सारे रल के ए विचार रहे हैं कि सानू की करना चाहिंदा है की नहीं करना चाहिंदा है, जे को वचन कमावे सो ये अपने आप ते असी कृपा करनी है। इस नूं असी फिर गुरु महाराज ने कमावा वचन लिखा, जे को वचन कमावे कमावे संतन का, कमाउण वास्ते मेहनत करनी पैंदी है। सो इन्हां वचनां नूं कमाउण वास्ते सानूं मेहनत करनी पवेगी, कुरबानी भी करनी पवेगी, सानूं जिहड़ा है इस वास्ते घालना करनी पवेगी, किसे काम नूं घालना, क्योंकि घालना घाले तों बिना यह काम नहीं हो सकता है। सो फिर तीसरी जिहड़ी कृपा है, तीसरी मेहर है, गुरु करदा है, गुरु प्रसाद दी तरी है, फिर गुरु दी कृपा हुंदी है। जे को वचन अपना गुरु दी कृपा, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए, फिर पूर्ण कृपा मन बस जो मन बस विच आ जांदा है। सो गुरु साहब एक तीसरी मेहर करदे हन, कृपा करदे हन, किन्हां ते जो अपने आप ते ये कृपा करदे हन, बोलो पहली कृपा सुनी अकाल पुरख ने सानू कर दिती है, इस देही को सिमरह देव सा देही बाजार की, वजो गोविंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही ला। इस शरीर नु जिस नु देव ते तरस रहे हैं उस शरीर सानू बख्श दिता है। गुरबाणी गुरु महाराज ने कृपा की है, दसा जामिया के अंदर कितनी कृपा की है, गुरु साहबान ने तत्ते ते बैठ कर करके सारे अपने परिवार नु बार करके अमर दी दात सिखी दी दात जो ए गुरु साहब जी ने कृपा की है, दसा जामे ने अंदर बहुत ही बख्शिश की है। गुरु नु असी मत्था टेकते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि गुरु परमेश्वर का दूसरा स्वरूप है। गुरु परमेश्वर का निर्गुण जो परमेश्वर है, निर्गुण जो परमात्मा है, वह नजर नहीं आता है, परंतु जे उस नु सरगुण स्वरूप दे विच देखना तो गुरु का दर्शन परमात्मा का दर्शन है। बोलो सो कौ टल गुर सेवी अहन सह सवाए, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख हो सिवत समी, नूर अरसों परसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म। गुरु का दर्शन परमेश्वर का दर्शन है, जिमे सत संगत निर्गुण निर्गुण जो वैकुंठ है, निर्गुण सचखंड है, जो साडी दृष्टि दे विच नहीं आउंदा। गुरु जी कहिंदे हन सचखंड वसै निरंकार, परंतु सरगुण सचखंड जो है ए साध संगत जो है सच्ची संगत है, जिथे परमात्मा दा इकट्ठे होके सिमन किया जाता है, जाप किया जाता है, हरि जस किया जाता है, ए सरगुण सचखंड है। बोलो सतनाम
1: श्री
0: वाहे, सरगुण वैकुंठ है। कहो कबीर कही है काहे साध संगत वैकुंठ, साध संगत सचखंड दा सरगुण स्वरूप है। सो साध संगत ऐसे तरह जो गुरु गुरु जो है ए परमेश्वर दा परमात्मा दा सरगुण स्वरूप है। गुरु दा दर्शन, गुरु नूं असीं इस करके मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, अरदासां बेनतियां करदे हां, है तां शरीर गुरु दा साडे वर्गा शरीर सी, जिन्हां ने उस ते विश्वास नहीं कीता, भरोसा नहीं कीता, उन्हां दा भला नहीं होया। जिन्हां ने गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु तो परमेश्वर नूं एक जाणिया, गुरु ते विश्वास कीता, धन गुरु नानक ते विश्वास कीता, गुरु दशमेश पातशाह ते विश्वास कीता, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते भरोसा करनगे, उन्हां जीवां दा उधार हुंदा है। उन्हां नूं गुरु जिहड़ा है ज्ञान बख्शदा है, वह ज्ञान बख्शदा है। दुनियावी ज्ञान जो है यह तां एक दुनिया दे विच रहण वास्ते कुछ बंदा किसे काम दे विच किसे खेते दे विच एक्सपर्ट हो जाता है, परंतु गुरु जो बख्शदा है यह ब्रह्म ज्ञान बख्शदा है, आत्म ज्ञान बख्शदा है, रूहानी ज्ञान बख्शदा है, विछड़े हुए जीव नूं परमात्मा दे विच मिलाउंदा है। इस करके आख्या जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वसीठ, दरगाह दा वसीठ, दरगाह दा वकील, वकील जो है। जे सोचन दा ऊग वह सूरज चढ़ा हजार, एते चानण होंदिया गुरबिन कोर, गुरबिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै, गुरबिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना। जितना मर्जी यह मनुख दुनियावी ज्ञान इकट्ठा किताबी ज्ञान इकट्ठा कर लवे, परंतु परमेश्वर दी समझ गुरु तो बिना नहीं आउंदी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे गुरु,
0: कितनो कुछ भी यह बन जावे, जा माइक पदार्थ इकट्ठे कर लवे, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਭ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੋ
1: ਹਾਰੀ।
0: ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ।